0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन नेटवर्क,
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर।

0: 对，
1: 然后当时，
0: 又是里边，又是里边，又是里边。
1: 所以在单子里面的吧。
0: 你能不能来搞？你能不能来搞？谁不老虎下来的都是丢给白老板。啊哈的，你这个不好领，不啦。कन्हैया जी मड़ा हो एनी हाउ यू नो कॉल डीजे डाला डाल बल कल तब से गुरुंग सरा बल कल कौन के सोक दी अब तक कम अस्सलाम वालेकुम ददुआ फुलू की जंग दे ददुआ फुलू की जंग दे ददुआ फुलू

मेसेज हम रवा दे मरा शामिल हो भोर सरा वाचे गामे से चाकड़ दे सबर खुदा दिन मख की यस ना सॉन्ग खत्म शो जबल सॉन्ग गोरम कना बल सॉन्ग बाहर हाल कल कल दा सकी करा इंसान लग दे खता की आगा कहना ना टप टप दे बारान टप टप दे बार अरे बारा निश्ता दे कि निश्ता दे सफी में मखे तो रगला दगा दगा ना शायद जहान सकड़े मैं से जगले देवाई छे अबले ज्याते गम दैन साफ तल मुश्किल दी सब ज्याते अमेरे को जाम शोध बकले कले राजो बिन हसा सुटे रे तो मन ना खुशाल रे तो से बल में से जगले भाई छी भाई जब बड़े बेटे होते हैं तो पैर बहुत अच्छा महफिल होता है अच्छा जी ऐसे ही है ठीक है रही आप इस सर बल में से जगले भाई छी आजवा अलिशबा वालेकुम अस्सलाम सारा ही सारा ढेरा मन खुशहाल रहता हूँ बल में ऐसे जगह लगाई चाहिए भाई तासो रोजाना प्रोग्राम तो वाले नाराज है अलिशबा बेगा ढेरा बीमार हो सिंगर था और बस रोजाना प्रोग्राम तो राजू कसा सुधेरे से तमाम ना दिस रसर बल में ऐसे जगह लगाई चाहिए भाई मैंने सॉन्ग की फरमाइश किया है कि अब सबको याद आ गया है एक्चुअली भाई मेरी फरमाइश

0: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का।
1: जिसकी ओ साफ है तो रात में
2: रेडियो अमन नेटवर्क, रेडियो अमन
3: नेटवर्क पैगाम अमन है, अमन
4: है प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बतें समेट कर
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
6: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।